नारायण स्वामी की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुधा मल्होत्रा के स्वर में। संगीतकार थे मधुकर गोलवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और सहरियों के स्वर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये भक्ति रचना।

संत ज्ञानेश महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जयश्री अबनीस ने।

जय श्री स्वप्निस के स्वर में संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। क्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना, जिसे गाया है श्री गिरीश ने।

संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था श्री गिरीश ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भक्ति संगीत हर समय हर पल।

अब तक आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हानगल जी की जीवन और साधना पर आधारित संगीत रूपक। आलेख अनुष्का अविनाश कुड़तरकर। आकाशवाणी धारवाड़ के ओर से इसे प्रस्तुत किया अनिल देसाई। यू आर लिसनिंग टू द म्यूजिकल फीचर बेस्ड ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हानगल। स्क्रिप्ट अनुष्का अविनाश कुड़तरकर। प्रोडक्शन अनिल देसाई। दिस वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आकाशवाणी धारवाड़ एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग मियां की तोड़ी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं नंदिनी चक्रवर्ती. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग मियां की तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार नंदिनी चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक दिस मॉर्निंग.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मियां की तोड़ी में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी नंदिनी चक्रवर्ती। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं सुमिता रॉय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन भट्टाचार्य जी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन, कलाकार सुमिता रॉय।
1: You were listening to Khayal in Raag Miyan Ki Todi. Our artist this morning was Nandini Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Rathindranath Chakraborty. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist is Sunita Roy. Accompanying her is Devashish Sarkar on the tabla and Rathon Bhattacharya on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist, Sunita Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी सुमिता रॉय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन भट्टाचार्य जी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भाटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज सुनीता रॉय। Accompanying her was Debashish Sarkar on the tabla and Ratan Bhattacharya on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अलका देव मारूलकर का गायन, राग है कोमल ऋषभासावरी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्रीत न कीजिए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं ना मोहे आस। इन द प्रोग्राम ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट अ वोकल क्लासिकल रिसाइटल बाय अलका देव मारूलकर। राग इज कोमल ऋषभ आसावरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल प्रीत न कीजिए एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल ना मोहे आस।

0: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था अलका देव मारुलकर का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं अलका देव मारुलकर का गाया राग ललिता गौरी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्रीतम सैया। द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं ध्रुव मंडल प्रसाद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग कोमल ऋषभ आसावरी, कंटिन्यूइंग द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारुलकर। वी नाउ प्रेजेंट राग ललिता गौरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल प्रीतम सैया, एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल ध्रुव मंडल प्रसाद। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय जमाल खान एंड ऑन द सारंगी बाय उस्ताद सुल्तान खान।

0: ये था अलका देव मारूलकर का गाया राग ललिता गौरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलका देव मारूलकर का गायन अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग ललिता गौरी। विद दैट वी कंक्लूड द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारूलकर। She was accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan. This program was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime.

0: is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल गाया राग भटियार। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं कल नाही पावे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं दिन गए बीत सुख के। तबले आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to vilambit ektal. The lyrics are kala nahi paave. This will be followed by a chota khayal set to drut teen tal. The lyrics are din gaye beet sukh ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजी राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। He was accompanied on the tabla by Shrasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनायक वोरा का तार शहनाई वादन. उन्होंने तार शहनाई पर बजाया ये है राग मारुबिहाग. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित सुरेश तळवलकर. In the program of Hindustani classical music, we now present Tar Shehnai recital by Vinayak Vora. He presents Rag Marubihag. Vilambit Gat set to Ek Tal and Drut Gat set to Teen Tal. He is accompanied on tabla by Pandit Suresh Tळvalkar.

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। यह था राग मारुबिहाग। अपना तार शहनाई वादन जारी रखते हुए विनायक वोरा अब प्रस्तुत करते हैं राग रागेश्री। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं दिलशाद अहमद। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग मारुबिहाग। कंटिन्यूइंग हिज तार शहनाई रिसाइटल, विनायक वोरा नाउ प्रेजेंट्स राग रागेश्री। विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय दिलशाद अहमद।

ये था राग रागेश्री। आप सुन रहे थे विनायक वोरा का तार शहनाई वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे दिलशाद अहमद। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग रागेश्री। यू आर लिसनिंग टू तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला by Dilshad Ahmed. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समन्वय सरकार का सितार वादन. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विभा शंघाई. समन्वय सरकार अपने सितार वादन की शुरुआत राग कौशी कानड़ा से कर रहे हैं. तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग कौशी कानड़ा, कलाकार समन्वय सरकार.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. Tonight, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital by our artist, Somonnoy Sarkar. Somonnoy Sarkar first performs Rag Kaushik Kannada. He is accompanied on the tabla by Bibhash Shanghai. Listen then to a sitar recital in Rag Kaushik Kannada. Our artist, Somonnoy Sarkar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सितार पर राग कौशिक कानड़ा सुन रहे थे। कलाकार थे समन्वय सरकार। ये है रागम चौबीसों घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत समन्वय सरकार सितार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग मिश्र पीलू। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग मिश्र पीलू। कलाकार समन्वय सरकार।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय अ फीचर्ड आर्टिस्ट समन्वय सरकार। समन्वय सरकार कंक्लूड्स हिज परफॉर्मेंस विद अ धुन इन मिश्र पीलू।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सितार पर राग मिश्र पीलू सुन रहे थे। आज के कलाकार थे समन्वय सरकार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विभा शंघाई। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Hindustani sitar recital tonight by our featured artist Shomonnoy Sarkar. Shomonnoy Sarkar performed Raag Kaushik Kannada and concluded with a dhun in Mishra Pilu. Accompanying the artist was Bibha Shanghai on the tabla. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत. आपके इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन. सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन मध्य लय रूपक तथा द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं इनका बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

अभी आप सुन रहे थे पंडित मोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाया राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। यह रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। राग है नट भैरव, जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खान। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला।

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: राग भूपेश्वरी। वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अकरम खान। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत. हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने. तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This evening we present devotional songs. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अनिंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज अनिंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to Ameera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.

0: लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू मीरा भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनिरुद्ध नाथ। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.